0: जावे
1: को साज करे तन खे गावे को जी ले फिर देहे
0: गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर
1: कथना कथि न आवे तोट कथ कथ कथि कोटी कोट कोट
0: निंदा दे लैन दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे
1: हुकम चलाए राहु नानक विकसै वे परवाहु
0: साचा साहेब साच नाए पाख्या पाओ अपार
1: आखण मंगे देह देह दात करे दातार
0: फेर के अगे रखिए जित दे सह दरबार
1: के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार
0: अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार
1: परमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार
0: नानक ए वै जानिए सब आपे सच्यार
1: आपे न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए
0: जिन से भया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान
1: गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए
0: गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहा समाई
1: ईश्वर गुर गुर खबर मां गुर पार्वती माई
0: जे हो जाना अखा नाही कहना कथन ना जाई
1: गुरा एक देह बजाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई
0: तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पानी के नाए करी
1: सिर ठो पाई वेखा बिन करमा के मिले लई
0: मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुने
1: गुरा एक देह बजाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई
0: जे जुग चारे यार जा होर तो सुनी होए
1: नवा खंडा वे जानिए नाल चले सब कोए
0: चंगा ना और खाई के जस कीरत जगले
1: जे किस नदर ना आवई ता बात

0: मनै सगल पवन की सुत।
1: मनै मोह छोटा ना खाए, मनै जम कै साथ न जाए।
0: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
1: मनै मार्ग ठाक न पाए, मनै पथ्यों प्रगट जाए।
0: मनै मग न चले पंथ, मनै धर्म से ती संत।
1: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
0: मनै पावे मोख द्वार, मनै परवारे सुधार।
1: मनै तरह तारी गुर सिख, मनै नानक भवे न भिख।
0: ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
1: पंच प्रवान पंच प्रधान।

तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना की आपे माना आपे आप आप करतन बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। तो पाप स्यानप सब तेरा सब की जाने आत्म की रह जिस भावत इस लै लड़ लाए थान तरह समाए। सो सेवक जिस कृपा।

0: यार वे प्रिय वे सखिया मुंह कही ना दे गया
1: यार वे एक दू एक चाड़ हाँ किस चेते ही
0: एक दू एक

मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ताकी कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत होए

खेल गए से पंखणों जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिले सो मिले।

जाए सच्चा पिड़ मल, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, हमें मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तोए, बिन गुर

जिस प्यारे सोने हो तिसे आके मर चलिए मन तन आगे राख के ऊ भी सेव करे सतगुर आगे शीस पेट देओ जे सतगुर सच पावे जे सतगुर सच पावे आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे जिस प्यारे सियाने हो तिसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन हमारे एहे कृपा कीजे हमारे।

बिन दर्शन कैसे रोशने ही हाँ दोहागन खरी रंजानी सब कंत रतियां मैं दोहागन कित मैं तन योगन एतड़े खसम न

मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया। रंग कसुंभ पुली तो सजन की मैं की मन पौदी हों तुद बिन अड न लहदे। नानक जी

0: करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, वो जो गवाए अगला मोए मोए पाणा खाए, जिस दा दिता खा बना
1: जिस दरिया शाह।